0: की गई वही भारत में लागू होगी कि नहीं, ये ज्यादा समझना जरूरी है। हमें इस देश की रचना को, इसे कुटुंब व्यवस्था को समझना ज्यादा जरूरी है। कोई भी नियम बनाने से पहले या कोई उपाय योजना करने से पहले तो ही वो सफल हो सकती है। कंपल्शन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हर नागरिक को ये समझना जरूरी होता है कि एक थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होना एक परिवार के ऊपर और वैसे ही देश के ऊपर एक आर्थिक बड़ा बोझा होता है, और इससे आपके जो सांसारिक जीवन पे है उस पे भी धीरे धीरे असर पड़ने लगता है। तो जो उपाय योजना की जाती है ये आपके हित में ही होती है, ये समझना जरूरी है। एक संस्कृति को देखें जो पैट्रियार्कल हम लोग कहते हैं, जो मुख्य सिस्टम है, तो इसमें अगर लड़की में कुछ दोष है, कुछ कुछ फैमिलीज में ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो आगे चल के ये मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अगर देखेंगे तो जिसको टेस्ट किया है उसके भी जीवन में ये मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो इसके लिए उनका काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा मेरे ख्याल से वो है पोस्ट मराइटल, बच्चे होने से पहले उनका जो टेस्टिंग किया जाएगा,
1: वो
0: जिसमें आप जीवन साथी तो चुन चुके हैं, तो अभी बच्चा होने से पहले जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी वक्त पे जाते हो, तभी ये थैलेसीमिया के लिए टेस्टिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा, अगर समझो आधी बीमारी है एक में नहीं है तो कुछ आगे जाके चिंता करने का विषय ही नहीं है, दोनों को नहीं तो भी चिंता करने का विषय नहीं है। जब दोनों में आधी आधी थैलेसीमिया की बीमारी या और कोई हीमोग्लोबिन से निगड़ित बीमारी है, तो उसका फिर गर्भधारणा के वक्त परीक्षण किया जा सकता है 8 से 12 हफ्ते में। और फिर वो परीक्षण अगर सही है और बच्चे को ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर बड़ी बीमारी यानी थैलेसीमिया मेजर बीमारी है, उसको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने वाला है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो
1: हाँ
0: ऐसे बच्चे का पैदा हम लोग रोक सकते हैं। और तीसरी चीज महत्व की ये है कि जब ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो माँ बाप है वो एक इफेक्टिव जरिया होते हैं उस फैमिली में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। यह हमें जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए जब आप खुद उससे पीड़ित होते हो तब आप शायद उसकी ग्रेविटी, हम लोग बोलते हैं सिचुएशन ग्रेविटी, ज्यादा तरीके से समझ सकते हो और ज्यादा अपने लोगों में उसे कन्विंस कर पाते हो। तो वो एक जरिया है। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी बेस्ड जो हम लोग कहते हैं सर्चेस से होते हैं, तो वहां पे अगर आप कम्युनिटी बेस्ड टेस्टिंग करवाते हो तो आप जानते हो कि ये सारी बीमारियां वहां पे है, तो जिंदगी में एक ही बार टेस्टिंग करवानी है तो आप जान सकते हो और आगे के लिए आप प्लान कर सकते हो।
1: और डॉक्टर साहब, एक बात यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि कई मरीज जो आपके पास आते हैं, लाए जाते हैं परिवार के साथ, मेल चाइल्ड होते हैं या फीमेल चाइल्ड होते हैं?
0: देखिए कैसे है कि भगवान की दया से इसमें मेल और फीमेल ये बीमारी ज़्यादा फर्क नहीं करती है। ये जो बीमारी होती है अपने, अगर आप इंसान की क्रोमोसोम या जेनेटिक रचना जाने तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जो 44 क्रोमोसोम होते हैं हम लोग इसको ऑटोसोम कहते हैं, दो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई जो सेक्स को डिसाइड करते हैं। ये जो बीमारी होती है ये सेक्स क्रोमोसोम से निगड़ित नहीं होती है, जो बचे हुए 44 जो ऑटोसोम्स हम लोग कहते हैं उससे निगड़ित होती है। तो इसी की वजह से मेल या फीमेल ये बीमारी कोई अंतर नहीं करती, दोनों को इफेक्टिवली उतनी ही अफेक्ट करती है।
1: बहुत ही प्रभावशाली बात आपने बताई है। और हम एक और गाना यहाँ पर आपसे सुनना चाहेंगे।
0: अगला गाना तो मेरे दिल के थोड़ा करीब है, क्योंकि मेरी जो बेटी है इस गाने को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और हमेशा नाच के भी दिखाती है। और ये गाना है बाजीराव मस्तानी पिक्चर का, दीवानी मस्तानी।

0: तो बाजीराव मस्तानी फिल्म के इस गाने के बाद वक्त की पाबंदी को मद्देनजर रखते हुए, घड़ी की ओर नजर डालते हुए, हम चाहेंगे कि चलते चलते इस बीमारी के बारे में कोई फाइनली एक संदेश आप देना चाहें तो क्या कहेंगे?
1: जब मैंने हिमाटोलॉजी ये ब्रांच चुनी अपने लिए, उसके बाद जब मैंने काम किया तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखने के बाद थैलेसीमिया मेरे दिल के करीब एक विषय बन गया है। तो मैं आज की युवा पीढ़ी को और सारी जनता को यही एक संदेश देना चाहूंगा, देखिए थैलेसीमिया वाले बच्चे ना ही कोई एक शाप है, ये हमारी जो अज्ञानिकता है उसके वजह का एक कारण है, जो है उसी की वजह से वो बच्चे का जन्म हुआ है। तो इस बच्चे को निग्लेक्ट मत कीजिएगा, इस बच्चे को जो भी उपचार जरूरी है उस बच्चे का जरूर ये उपचार करवाइएगा, उसके तरफ ध्यान दीजिएगा, और अपने आप को और अपने जो परिवार है और जो अपने दोस्त है उनको आप एजुकेट कीजिएगा कि ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं। तो इस बीमारी को रोकथाम करना यही इसका मुख्य इलाज है। हम लोग इस बीमारी को जड़ से तो मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन इसे जरूर रोक सकते हैं। तो आप जरूर अपनी टेस्टिंग करवाइएगा, जानिएगा कि आपके रक्त में ये गुण है या नहीं है, और फिर आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर हमने आज ये रोकथाम नहीं की तो ये बच्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जाने वाले हैं और आपके फैमिली के ऊपर और अपने देश के ऊपर एक नया आर्थिक दबाव डालने वाले हैं।
0: बहुत ही अच्छी गहरी सूक्ष्म जानकारी आसान शब्दों में आपके लफ्जों से निकली है, और हम चाहेंगे कि इस तरह की जागरूकता बनी रहे और सुनने वाले इसका पालन करें। जो जो इससे ग्रस्त हैं वे ज़रूर जागरूक होकर अन्य लोगों को भी जागरूक बनाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज के इस थैलेसीमिया विषय पर आपने उपचार और बचाव और सावधानियां तमाम सारी जानकारी दी, तो विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
1: शुक्रिया राजेंद्र जी।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे से। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया वंदना ठाकुर ने, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनीता वेस्ली पटेल। अब दीजिए आज के इस कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए पिटारा।

विविध भारती कार्यक्रमों का अनुप्रसारण आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये गणेशपुर, दलदली, मदन नगर, धर्मपुर, गौरा, भरदा, सिंघरा, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी, टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के रामानुजगंज और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 23 है। ये चिनिया, महावीरगंज, शिवपुर, कनकपुर, लुर्गी, टकिया, मेंढारी, प्रेमनगर, कोटराही, भगवानपुर, नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, पंडोपारा, सुखरी भंडार, कोरवापारा, बरपारा, कठबुड़ा, कंडराजा, बैरडाण, पतरापारा, दांती ढाब, घोरा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, फड़ामाचा, हरदीझरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल की छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 123 है। ये आमगांव, पोटिया, क्रोंधा, प्रेमनगर, बेहरामार, औरानारा, कुड़ेकेला, सिंघी छाप, डोंगा भवना, हाटी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हारपाली, पथरीपाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट और तौरेंगा में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये ओड़, अमलोर, ताराझड़, डडईपानी, नगरार, खोलापारा, जिडार, छिंदौला, तौरेंगा, कावारामा, डूमर घाट, कोदोमाली, कोनारी, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धमतरी वन मंडल के दुगली में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये चार गांव जबर्रा, तुम्बहरा, डूंगरडूला, गज कन्हार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे

0: तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे।
1: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट अभी आपने सुना। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण, हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का। अब से थोड़ी देर बाद 5:10 पर आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम शामे गजल। युवा श्रोता कार्यक्रम युवाणी सुन सकेंगे 5:30 पर। युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय है यातायात नियमों का पालन करें, दुर्घटना और सजा से बचें। साथ ही आप सुन सकेंगे क्रम तुम याद आए। फिल्म संगीत का वक्त होगा 6:20 और 7:00 का। किसान भाई कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे 7:20 पर। चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय है मशरूम उत्पादन छोटे किसानों की आय का उत्तम स्रोत। आज की नसीहत में आप सुनेंगे लेजर तकनीक द्वारा भूमि का समतलीकरण। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे 8:20 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:30 पर। कार्यक्रम विविध संगीत हम पेश करेंगे 10:00 और 10:30 का वक्त होगा फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध का। ये था कार्यक्रम विवरण, हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का।
3: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए शामी गजल। आइए सबसे पहले सुने जगजीत और चित्रा सिंह को, शायर हैं सईद राही।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर। अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर

0: मन की बात के संवाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: शाम गजल कार्यक्रम में आइए अब सुने मुमताज राशिद की लिखी गजल पंकज उदास की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे मुमताज राशिद की लिखी गजल पंकज दास की आवाज में। इसके साथ ही शामी गजल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रेडियो दोस्त ईशा बहुत स्वागत करती हूं आप सभी श्रोताओं का हम युवाओं के पसंदीदा कार्यक्रम युवानी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जो हम सभी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हम सभी का जीवन बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक पल की गलती इसे दर्द में बदल सकती है। आज इंसान चांद तक पहुंच गया है, तकनीक में बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन सड़क पर चलते समय धैर्य और जिम्मेदारी रखना अभी भी सीख रहा है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो अच्छा वाहन चलाता हूँ, बस 2 मिनट की बात है। यही सोच कई बार सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। हर दिन हम सभी सड़क पर निकलते हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई ऑफिस, बाजार या लंबी यात्रा पर। लेकिन क्या हम सड़क पर चलते समय सभी नियमों का पालन करते हैं? शायद। यही छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े हादसों का कारण बन जाती है। दोस्तों, सड़क दुर्घटनाएं आज पूरे देश में एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं और लाखों लोग घायल हो जाते हैं। इन दुर्घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण है यातायात नियमों की अनदेखी। यातायात नियम केवल कानून नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा कवच है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम है हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग। जो लोग दोपहिया वाहन चलाते हैं उनके लिए हेलमेट जीवन रक्षक है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं पास ही तो जाना है तो इसमें हेलमेट की क्या ज़रूरत है, लेकिन दुर्घटना यह देखकर नहीं आती कि दूरी कितनी है। एक छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। उसी प्रकार कार में सीट बेल्ट लगाना बेहद ज़रूरी है। सीट बेल्ट दुर्घटना के समय शरीर को सुरक्षित रखती है और गंभीर चोटों से बचाती है। दोस्तों, सड़क सुरक्षा का दूसरा नियम है तेज गति से वाहन ना चलाना। तेज रफ्तार केवल रोमांच नहीं बल्कि मौत का न्योता भी है। सरकार ने हर सड़क के लिए गति सीमा तय की है ताकि वाहन चालक और पैदल यात्री सुरक्षित रह सकें। इसलिए हमेशा निर्धारित गति में वाहन चलाना चाहिए। तीसरा नियम है मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन ना चलाना। इसके साथ ही दोस्तों, यातायात नियमों में ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। लाल बत्ती पर रुकना, पीली बत्ती पर सावधान होना और हरी बत्ती पर आगे बढ़ना, यह नियम हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन कई बार जल्दबाजी में रेड लाइन तोड़ दी जाती है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। कुछ मिनट बचाने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी खतरे में डालना समझदारी नहीं है। दोस्तों, पैदल यात्रियों को भी सड़क पार करते समय हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। फुटपाथ पर चलना चाहिए और इधर उधर देखकर सड़क पार करनी चाहिए। बच्चों और बुजुर्गों को सड़क पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, हर साल दुनिया भर में लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, जान गंवा बैठते हैं, घायल हो जाते हैं। यही कारण है कि लोगों को जागरूक करने और सुरक्षित जीवन का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि थोड़ी सी सावधानी और जिम्मेदारी कई जिंदगियां बचा सकती है। दोस्तों, सड़क केवल रास्ता नहीं होती है, यह लोगों के सपनों, जिम्मेदारियों और रिश्तों को जोड़ने का माध्यम होती है। हर दिन कई लोग अपने काम, पढ़ाई, जरूरी कामों के लिए सड़कों पर निकलते हैं। ऐसे में सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए सड़क सुरक्षा सप्ताह में यह याद दिलाता है कि जीवन की कीमत सबसे अधिक है। इस अभियान के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां, पोस्टर प्रतियोगिताएं, भाषण, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी जाती है ताकि वे शुरू से ही जिम्मेदार नागरिक बन सके। दोस्तों, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर केवल दुर्घटना ही नहीं होती बल्कि कानूनी सजा भी मिल सकती है। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सीट बेल्ट ना पहनने, रेड लाइट तोड़ने, ओवर स्पीडिंग करने और नशे में वाहन चलाने पर भारी चालान के साथ जेल भी हो सकती है। सरकार ने नए मोटर वाहन कानून के तहत जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी है ताकि लोग नियमों का पालन करें। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम केवल जुर्माने के डर से नियम माने? नहीं, हमें नियमों का पालन अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। जब हम नियमों का पालन करते हैं तब हम एक जिम्मेदार नागरिक कहलाते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि सड़क केवल हमारी नहीं, उस पर और भी लोग चलते हैं, बच्चे, वृद्ध और अन्य वाहन चालक। हमारी एक गलती किसी निर्दोष का नुकसान कर सकती है, इसलिए सड़क पर हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, सड़क सुरक्षा केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की जिम्मेदारी है। जब तक हर व्यक्ति खुद जागरूक नहीं होगा तब तक पूरी तरह सुरक्षित वातावरण बनाना मुश्किल है। दोस्तों, जीवन अनमोल है और इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। आज की बात में बस इतना ही। दोस्तों, आज है महीने का दूसरा सोमवार और आज बारी रहती है क्रम तो याद आएगी। दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे चेहरे आए जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया। लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो भले ही आज फिल्मों से दूर हों, फिर भी उनकी यादें लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जिन्होंने अपने शानदार अभिनय और खूबसूरती से 80 और 90 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध अभिनेत्री फरहनाज की। फरहनाज हिंदी फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी अभिनय करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और दर्शकों का दिल जीता। वे अपने दमदार एक्टिंग, आकर्षक व्यक्तित्व और भावनात्मक किरदारों के लिए पहचानी जाती थी। फरहनाज ने अपने समय के लगभग सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया और

बॉलीवुड में एक सफल अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फरहनाज की ज़िंदगी का दिलचस्प सफ़र। दोस्तों, फरहनाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि वह बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है। यानी अभिनय का हुनर इस परिवार में शुरू से ही मौजूद था। बचपन से ही फराह का माहौल कला और फिल्मों से जुड़ा हुआ था, इसलिए उनमें अभिनय के प्रति रुचि पैदा हो गई। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद अभिनय की दुनिया में कदम रखा। दोस्तों, फरहनाज की फिल्मों में इमोशन हो, ड्रामा हो, हर किरदार में उन्होंने जान डाल दी। और अब समय है उन सुनहरे पलों को फिर से जीने का। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं उनके फिल्मी दौर का एक सुपरहिट और यादगार गीत सिर्फ आपके लिए।

फराह नवाज की फिल्म ईमानदार का ये दिल छू लेने वाला गीत सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज़ में, गीत के बोल प्रकाश मेहरा के थे और संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों, फराह नवाज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 1985 में की। उनकी पहली फिल्म थी फासले, जिसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा ने बनाया था। इस फिल्म के माध्यम से फराह नवाज ने बॉलीवुड में प्रवेश किया। फराह के अभिनय और खूबसूरती को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और धीरे धीरे इंडस्ट्री में अपनी जगह मजबूत कर ली। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में फराह नवाज बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। उन्होंने पारिवारिक और भावनात्मक फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। फराह नवाज ने अपने करियर में कई प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, मिथुन, गोविंदा और सनी देओल जैसे बड़े कलाकारों के साथ फिल्मों में अभिनय किया। उस समय दर्शक उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। उनकी प्रमुख फिल्मों में नसीब अपना अपना, मरते दम तक, बेगुनाह जैसे फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों में उनके अभिनय को काफ़ी सराहा गया। फराह नवाज की खासियत यह थी कि वे हर प्रकार के किरदार को बहुत ही सहजता से निभाती थी, चाहे भावुक भूमिका हो या पारिवारिक किरदार हो, वे हर भूमिका का जान डाल देती थी। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी प्रभावशाली थी और दर्शक उनके अभिनय से आसानी से जुड़ जाते थे। फराह नवाज का स्वभाव काफ़ी स्पष्ट और आत्मविश्वासी माना जाता था। वे अपने विचार खुलकर व्यक्त करती थीं। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर पहचान बनाई। तो दोस्तों, चलिए अब उन यादों की गलियों में चलते हैं जहां हर धड़कन में बसता है एक एहसास, और सुनते हैं ये फासले का खूबसूरत सा गाना, सैयार का लिखा हुआ, संगीत से सजाया है शिवहरी ने, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

तो दोस्तों अभी अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म फासले का ये गीत शहयार का लिखा हुआ, संगीत से सजाया था शिव हरी ने। दोस्तों फरहानाज का फिल्मी सफ़र यह साबित करता है कि मेहनत और प्रतिभा के बल पर कोई भी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपने अभिनय से लाखों लोगों का मनोरंजन किया और बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई। आज भले ही फरहानाज फिल्मों में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में और अभिनय आज भी लोगों को याद है। पुराने फिल्म प्रेमी आज भी उनकी फिल्मों को पसंद करती हैं। उनका नाम उन अभिनेत्रियों में लिया जाता है जिन्होंने अपने समय में हिंदी सिनेमा को नई यादगार फिल्में दी। दोस्तों किसी भी कलाकार की सफलता के पीछे उसकी मेहनत, संघर्ष और समर्पण छिपा होता है। फरहानाज ने भी अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने अभिनय के दम पर पहचान बनाई। फरहानाज हिंदी सिनेमा की एक प्रभावशाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपने अभिनय और व्यक्तित्व से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की अद्भुत छाप छोड़ी। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है अपने लक्ष्य को पाने का। दोस्तों फरहानाज की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता सिर्फ नाम और शोहरत नहीं होती, बल्कि अपने काम से लोगों के दिल में जगह बनाना ही असली सफलता होती है। उन्होंने अपने अभिनय से लाखों दिलों को हंसाया, रुलाया और भावनाओं से जोड़ा। यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। तो दोस्तों ये था बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री फरहानाज का दिलचस्प सफ़र। तो दोस्तों आज के क्रम तुम्हें आदा

में बस इतना ही। दोस्तों, आप भी हमारे आकाशवाणी कार्यक्रम में अपने पसंदीदा गीत और मेल्स के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। हमारे साथ पत्र व्यवहार करने के लिए यह हमारा पता है, कार्यक्रम युवाणी प्रभाग द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 21, आकाशवाणी केंद्र रायगढ़। हमारा पिन कोड है 4960001। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल का पता है shrotarayagad@gmail.com। दोस्तों, मेल करते समय सब्जेक्ट के स्थान पर क्रम लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के क्रम में बस इतना ही। मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर होगी मुलाकात युवाणी के अगले कार्यक्रम में। तब तक के रखिए अपना ख्याल और सुनते रहें आकाशवाणी रायगढ़।

युवाणी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि यह आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है।

श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद 6:20 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। फिल्म संगीत एक बार दोबारा आप सुन सकेंगे शाम 7 बजे से। 7:20 का वक्त होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का। की बात का विषय है मशरूम उत्पादन छोटे किसानों की आय का उत्तम स्रोत। आज की नसीहत में आप सुनेंगे लेजर तकनीक द्वारा भूमि का समतलीकरण। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। गैर फिल्मी गीत हम आपको सुनाएंगे रात्रि 8:20 पर। 8:30 पर सुनिएगा

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत हम पेश करेंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 का वक्त होगा फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध का। ये थे हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रम।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च 1 विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagad@gmail.com।

0: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग प्रथा शुक्ला के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव के चलत प्रधानमंत्री हा सोमनाथ मंदिर में करीन विशेष महापूजा। किहीन ए मंदिर हा अटूट आस्था और दिव्यता के हरय प्रतीक। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हुई सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन। रायपुर में हुए कार्यक्रम में शामिल हुई मुख्यमंत्री साय। 75 पहली हुए पुनर्निर्माण लकरीन सुरता। और प्रदेश में होवैया नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम और उपचुनई पर नामांकन पत्र भरे के प्रक्रिया आज ले हुई शुरू। अब समाचार विस्तार ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीन है कि सोमनाथ मंदिर हा अटूट आस्था दिव्यता और देश के शाश्वत आत्मा के प्रतीक हरय। ओमन हकीन कि सोमनाथ अमृत परब हा सिर्फ अतीत के उत्सव नो हरय बल्कि एहा अवैया 1000 तक देश के प्रेरणा बनही। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव ला संबोधित करत हुए प्रधानमंत्री हकीन है कि सोमनाथ हा लोगन मनला ए सुरता दिलाते कि कोनो भी राष्ट्र हा तभे लंबा बेरा तक मजबूती ले खड़े रही सकत है जब तक ओहा अपन जड़ ले जुड़े रहे। प्रधानमंत्री हकीन कि 11 मई 1998 के 3 परमाणु परीक्षण करे गे रहीस जेकर माध्यम ले देश के वैज्ञानिक मन हा भारत के क्षमता के प्रदर्शन ला

0: पूरा दुनिया के आगू करे रहीन। एकर ले पहिले प्रधानमंत्री ह सोमनाथ मंदिर मा विशेष महापूजा करीन। ओमन ह मंदिर के शिखर मा कुंभाभिषेक घलो करीन। मंदिर के इतिहास मा पहली घाव शिखर मा 11 ठीक तीर्थ वाले जगह ले लाए गए पवित्र जल ले अभिषेक करे गए है। श्री मोदी ह ध्वजारोहण कार्यक्रम मा घलो शामिल होइन। औ इही बीच वायुसेना ह एयर शो करीन, जेमा सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ह सोमनाथ के ऊपर सुघर करतब दिखाइन। हेलीकॉप्टर ले फूल के बरसा करेगी, जेकर बाद श्री मोदी हा विशेष प्रदर्शन ला घलो देखें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुई। ए बेरा मा उमन हा जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मन के संग गुजरात के सोमनाथ मंदिर ले वर्चुअली जुड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ला घलो सुनिन। ए बेरा मा मुख्यमंत्री हा कहिन कि 75 बच्चर पहली आजे के दिन सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण हो रही और इही ऐतिहासिक अवसर ला देश भर मा स्वाभिमान पर्व के रूप मा मनाए जाते। उमना कहिन के सोमनाथ मंदिर मा घेरी बेरी हमला होइस, फिर मंदिर के आस्था और परंपरा ला खत्म नहीं करे जा सकेस। श्री साय कहिन कि पहली घाव आक्रमण के बेरा मंदिर के पुजारी और श्रद्धालु मन हा मंदिर ला नहीं छोड़िन और अपन प्राण दे देन। उखर त्याग हा आज घलो इतिहास मा स्वर्ण अक्षर मा अंकित हरय। मुख्यमंत्री हा बताइन के प्रदेश मा देवी माता के मंदिर ला शक्तिपीठ योजना के माध्यम ले विकसित करे जाते। ऐसन है कबीरधाम जिला के भोरमदेव महादेव मंदिर ला स्वदेश दर्शन योजना के चलत 148 करोड़ रुपया के स्वीकृति मिले है। एबेरा मा वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेताम हा मौजूद रहे। प्रदेश भर के कतकोन जिला मा घलो आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन हुई। उहे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो भोरमदेव मंदिर परिसर में हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुई। एबेरा में उमन श्रद्धालु मनला संबोधित करत हुए कहिन है कि ये कार्यक्रम हा भारत के पुरातन संस्कृति और सभ्यता ला सुरता करे के मौका हरय। ऐसने जांजगीर चांपा जिला के धार्मिक नगरी खरौद मा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था के 1000 वर्ष विषय मा श्री लक्ष्मणेश्वर मंदिर मा विशेष कार्यक्रम होइस। ए मंदिर परिसर मा गुजरात के सोमनाथ और वाराणसी मा हुए कार्यक्रम के सीधा प्रसारण दिखाया गिस। कार्यक्रम मा सांसद कमलेश जांगड़े, कलेक्टर जन्मेजय महुबे समेत बड़का संख्या मा श्रद्धालु मनाए रहिन। प्रदेश के कतकोन जिला में घलो आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन करेगी। केंद्र सरकार हा विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन पर अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम हा 1 जुलाई ले देश भर में लागू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़बो बाचे समाचार कोती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा पश्चिम एशिया संकट के चलत लोगन मन ले एक बछर तक सोना झन खरीदे, ईंधन की खपत कम करे और विदेशी मुद्रा ला बचाए के आग्रह करीन है। हैदराबाद में काली एकठिन कार्यक्रम में श्री मोदी हा वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था ला एक घाव फेर शुरू करे के अपील करीन है। प्रधानमंत्री की अपील हा ऐसन बेरा में आई से जब पश्चिम एशिया में बाढ़त तनाव और होरमुज जल डमरू मध्य के तीर तखार के परेशानी के सेती वैश्विक कच्चा तेल के कीमत हा सरलग $70 प्रति बैरल ले बाढ़ के लगभग $126 प्रति बैरल हो गए है। इही बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहिन है कि पश्चिम एशिया में जौन युद्ध के स्थिति बने हुए है ओखर असर दुनिया भर में पड़त है और ओखर ले हमर देश घलो अछूता नहीं रही। एकरे सेति प्रधानमंत्री हा देश के लोगन मनला बड़ जरूरी और सही सलाह दीन है। प्रदेश में होवैया नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम और उपचुनई पर नामांकन पत्र भले के प्रक्रिया आज ले शुरू हो गए है जौन 18 मई तक चलही। नामांकन पत्र के जांच 19 मई के करी जाही और उम्मीदवार मन 21 मई तक अपन नावला वापिस ले सके। मतदान एक चरण में 1 जून के हो ही जबकि परिणाम 4 जून के आना है। जानबा के अनुसार नगरी निकाय में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 समेत कुल 82 पद पर चुनाई होना है। उन्हें त्रिस्तरीय पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच के 82 और पंच के 1136 समेत कुल 1228 रिक्त पद पर चुनाई कराए जाए। नारायणपुर पुलिस आज सामुदायिक पुलिसिंग ला मजबूत करे के उद्देश्य ले माण मैत्री अभियान की शुरुआत करी। नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान में हुए कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया बताइन के अभियान के उद्देश्य नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्र के जवान लयिका और यहां के रहैया मनला शिक्षा खेल स्वास्थ्य रोजगार और सामाजिक गतिविधि ले जोड़ना है। कार्यक्रम में हमर फिट नारायणपुर के चलत सामूहिक जुम्बा सत्र घलो हुई। इबेरा में डायल 112 वाहन सेवा माण मैत्री रथ और बाइक पेट्रोलिंग टीम लघलो हरा झंडी दिखा के भेजे गई से। बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बल मन माओवादी मन कोती ले छिपा के रखे गए सामान ला जब्त कर ले है। पुलिस ला सूचना मिले रही के डोडी तुमनार गांव के पहाड़ी क्षेत्र में माओवादी मन सामान ला छिपा के रखे है। एकरे आधार में पुलिस सहायता केंद्र पीडिया और गंगालूर थाना के संयुक्त टीम सर्च अभियान चलाई। एबेरा मां भुइया के भीतरी छिपाए गए एक ठिक बंकर घलो मिले है। सुरक्षा जांच के बाद वहां ले बड़का मात्रा में विस्फोटक सामग्री हथियार बैटरी सोलर प्लेट जनरेटर वेल्डिंग मशीन और बीजीएल सेल ला बरामद करे गए है। धमतरी जिला में 1 महीना तक चलैया समर कैंप के शुरुआत 9 मई ले हो गए है। जिला प्रशासन और खेल विभाग के समन्वय ले चलत एक कार्यक्रम और ये समर कैंप 8 दिन तक चलही जेमा खेल तकनीक के संगे संग व्यक्तित्व विकास में विशेष जोर दे जात है। रायपुर के खमारडी थाना क्षेत्र के लक्ष्य ज्वेलर्स में शनिचर और इतवार के रतिहा करीब 1 करोड़ रुपया के सोन चांदी के गहना के चोरी हो गए है। इतवार के दुकान बंद होए के स्थिति एक जानकारी कारोबारी ला तुरते नहीं हो पाईस। फिर सोमवार के बिहनिया जब वह दुकान खोलिस तब ए चोरी के घटना के पता ओला लगिस। पुलिस दुकान और तीर तखार में लगे सीसीटीवी कैमरा ले मामला की जांच करत है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक ठिन निम्न दाब के क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी ले लेके श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर बने हुए हैं। एकर संग ऊपरी हवा के चक्री चक्रवाती घेरा विस्तारित है। एकर ले अवैया 48 घंटा में अव प्रबल होए के संभावना है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। गुजरात के सोमनाथ अमृत महोत्सव के चलत प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर में करीन विशेष महापूजा। किहिन ए मंदिर अटूट आस्था और दिव्यता के हरय प्रतीक। प्रदेश के कतकोन जिला में आज हुई सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के आयोजन। रायपुर में हुए कार्यक्रम में शामिल हुई मुख्यमंत्री साय। 75 बचर पहली हुए पुनर्निर्माण लकरिन सुरता। औ प्रदेश में होवैया नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत मन के आम और उपचुनई पर नामांकन पत्र भरे के प्रक्रिया आज ले हुई शुरू। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सावत है। जय जोहार।
2: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे काला पत्थर फिल्म का गीत। आवाज़ थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की। गीतकार थे साहिर और संगीत राजेश रोशन का था।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था?
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका 2 स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे और उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो, ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, और उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है। और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका 2 स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके इतिहास

0: ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था। जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में, जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन के स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

फिल्म संगीत का अगला गीत है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में फिल्म मिस्टर नटवर लाल के लिए ये आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: इस गीत के पहले आपने सुना याराना फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, और ये गीत था फिल्म लूटमार से, आवाज़ थी आशा भोसले की। गीत लिखा था अमित खन्ना ने और संगीत राजेश रोशन का था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6 मिनट होने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: 6:45 हुए हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: खो गया इंतजाम।
7: किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
5: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए। सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: दीदी नौकरी लग गई।
9: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
8: हाँ दी नया मोबाइल।
9: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
8: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
9: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
8: पर दीप
9: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
8: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
0: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। रायपुर के महादेव घाट में मुख्यमंत्री ने की पूजा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। और विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा।
5: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
4: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है, जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजधानी रायपुर के महादेव घाट स्थित हटकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं के साथ गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर से वर्चुअली जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष पूर्व आज ही के दिन सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था, और इसी ऐतिहासिक अवसर को देशभर में स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर पर कई बार बाहरी आक्रांताओं द्वारा हमले किए गए, लेकिन मंदिर की आस्था और परंपरा को समाप्त नहीं किया जा सका। श्री साय ने कहा कि पहली बार आक्रमण के दौरान मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने मंदिर नहीं छोड़ा तथा अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका त्याग आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है।
6: आज पूरा देश सोमनाथ स्वाभिमान दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 75 साल पहले सोमनाथ मंदिर का पुनरोद्धार हुआ था, और आज 75 साल बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूजा अर्चना करके पूरे देश की खुशहाली की कामना की है।
4: इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और कृषि मंत्री रामविचार नेता मौजूद थे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी भोरमदेव मंदिर परिसर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये आयोजन भारत की पुरातन संस्कृति और सभ्यता के गौरव

0: पूर्ण स्मरण का अवसर है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी खरौद में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व अटूट आस्था के 1000 वर्ष विषय पर श्री लक्ष्मणेश्वर मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में गुजरात के सोमनाथ और वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण दिखाया गया। कार्यक्रम में सांसद कमलेश जांगड़े, कलेक्टर जन्मेजय महोबे सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। उधर बालोद के कपिलेश्वर शिव मंदिर में राष्ट्रव्यापी स्मरण उत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही जिले के अन्य प्राचीन शिवालयों पलारी तथा बालोद विकासखंड के जगन्नाथपुर स्थित शिव मंदिर में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किए जाने की खबर मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में कल एक समारोह में श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने पूरे देशवासियों को बहुत महत्वपूर्ण और उचित सलाह दी है।
1: पश्चिम एशिया में जो वार की स्थिति बनी हुई है इसका असर संपूर्ण विश्व को हो रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सलाह पूरे देशवासियों को दिया है। हम सब लोग विदेश हमारे देश का पैसा कम से कम जाए, इसके लिए डीजल पेट्रोल उसका भी खपत हम लोग सोच समझ कर करें और सोना वगैरह खरीदेंगे तो यहाँ का पैसा विदेश जाएगा तो हम लोग को सावधानी तो बरतना ही पड़ेगा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है जो 18 मई तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 19 मई को की जाएगी। उम्मीदवार 21 मई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान एक ही चरण में 1 जून को होगा जबकि परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 5 और पार्षद के 77 सहित कुल 82 पदों पर चुनाव होगा। वहीं त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 10, सरपंच 82 और पंच के 1136 सहित कुल 1228 रिक्त पदों के लिए चुनाव होगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छुपाकर रखा गया डंप बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम डोडी तुमनार के पहाड़ी क्षेत्र में माओवादियों ने सामग्री छिपा रखी है। इसके आधार पर पुलिस सहायता केंद्र पीड़िया और गंगालूर थाने की संयुक्त टीम ने सर्च अभियान चलाया। अभियान के दौरान जमीन के अंदर छिपाया गया एक बंकर मिला। सुरक्षा जांच के बाद वहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, हथियार, बैटरी, सोलर प्लेट, जनरेटर, वेल्डिंग मशीन और बीजीएल सेल बरामद किए गए। नारायणपुर पुलिस ने आज सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के उद्देश्य से माड़ मैत्री अभियान की शुरुआत की। नारायणपुर के हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि अभियान का उद्देश्य नक्सल प्रभावित अंदरूनी क्षेत्रों के युवाओं और ग्रामीणों को शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ना है। कार्यक्रम में हमर फिट नारायणपुर के तहत सामूहिक जुम्बा सत्र भी आयोजित किया गया। इस दौरान डायल 112 वाहन सेवा, माड़ मैत्री रथ और बाइक पेट्रोलिंग टीम को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर के खमारडीह थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स में शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1 करोड़ के सोने चांदी के जेवरों की चोरी हो गई। रविवार को दुकान बंद होने के कारण इसकी जानकारी कारोबारी को नहीं हुई। सोमवार सुबह जब उसने दुकान खोली तब चोरी का पता चला। पुलिस दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर तक बना हुआ है। इसके साथ ही ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा विस्तारित है। इसके अगले 48 घंटों में और प्रबल होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश के मौसम में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। धमतरी जिले में 30 दिवसीय समर कैंप की शुरुआत 9 मई से हो गई है। जिला प्रशासन और खेल विभाग के समन्वय से आयोजित यह समर कैंप 8 जून तक चलेगा, जिसमें खेल तकनीक के साथ साथ व्यक्तित्व विकास पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और सक्ती जिले के चंद्रपुर के बस स्टैंड के पास आज एक वाहन में हवा भरते वक्त एयर स्टोरेज टैंक फट गया। इस हादसे में वाहन मैकेनिक की मौके पर ही मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भी आयोजित किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। रायपुर के महादेव घाट में मुख्यमंत्री ने की पूजा। प्रदेश में होने वाले नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम तथा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। और विकसित भारत राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: खुद्दार फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के, गीतकार थे मजरूह और संगीत राजेश रोशन का।
1: आकाशवाणी F90।
2: 90 वर्षों की स्वर्णिम गाथा आकाशवाणी की सत नमन। नमस्कार साथियों, मैं पतित यादव, मीडिया प्रभारी यादव समाज, बाग भारा महासुन। आज हम सभी के लिए यह गर्व और गौरव का क्षण है। देश की विश्वसनीय और ऐतिहासिक प्रसारण सेवा आकाशवाणी अपने ऐतिहासिक 90 वर्ष पूर्ण कर रही है। 9 दशकों की यह यात्रा केवल प्रसारण का इतिहास ही नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, संस्कृति और जनभावनाओं की अमर गुंजा है। आकाशवाणी ने हर संकट में देश की आवाज बनकर सत्य और विश्वास का संदेश दिया है। गांव की चौपाल से लेकर राष्ट्रीय मंच तक इसकी ध्वनि ने समाज को जोड़ा, जागरूक किया और प्रेरित किया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं आकाशवाणी परिवार समस्त कर्मियों को, श्रोताओं को 90 वर्ष पूरा होने पर हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। कामना है कि आकाशवाणी आगे भी निष्पक्षता थे, संस्कार और राष्ट्रभक्ति ध्वजा ऊंची रखते हुए निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित करे। सादर शुभकामनाएं।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
8: देश की सुरीली धड़कन
9: विविध भारती,
7: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
8: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
7: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
8: वीर सैनिकों की जयमाला
7: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
8: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
10: सखी सहेली,
8: बॉम्बे टॉकीज और
11: सेल्यूलॉइड के सितारे,
8: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
12: मुझे याद सब है जरा जरा,
7: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
8: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
7: मन का सुकून, दिल की आरती,
8: सुरीली संदली।
0: आइए अब सुने फिल्म दूसरा आदमी में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे राजेश रोशन। फिल्म जूली के लिए आवाजें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनैया सबो संगी संगवारी दाई दीदी बहनी लइका सियान किसान मितान सबो झनला सुमित्रा पटेल के राम राम जय जोहार। और आप सबो संगी संगवारी मन के हमार कार्यक्रम चौपाल में स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और देखा संगवारी हो, आप मन तो मौसम ला देखते छवा, कभी बदली करत है तो कभी पानी गिरत है तो कभी बहुत ज़्यादा धूप करत है, तो ऐसने में आपन के सेहत के स्वास्थ्य के देख रेख बहुत जरूरी हवे संगवारी हो। विशेष करके खान पान थोड़े से एती ओती हो जाले, तबीयत बिगड़ जाते संगवारी हो, तो ओकरे सेती आपन के दिनचर्या के ऊपर विशेष ध्यान रखाओ। समय में सुताओ, समय में जागाओ और समय में खान पान करो। और संगवारी हो, अभी गर्मी के बेला में अच्छा से हरा भरा साग सब्जी मसालेदार वाला साग सब्जी नहीं खाना है। और आपन के सेहत के संगे संग आपन के घर परिवार के भी ख्याल रखना है कहा। और हमन अपन जो आय बढ़ाए बर अपन घर में पशुपालन करे रहन तो ओमन के भी स्वास्थ्य के भी देख रेख करना है कहा। जैसे संगवारी हो, हमार थोड़े खान पान है इतनी उत्ती हो जाते तो स्वास्थ्य है बिगड़ जाते, वैसे हमार पशु मन के भी स्वास्थ्य हर हवे संगवारी हो। ओमन के स्वास्थ्य के ऊपर भी हमला विशेष ध्यान रखना है। गर्मी के बेला चलत है तो उमल्ला गर्मी ले बचा के रखना है कह, उमल्ला छायादार कोठा में रखना है कह। अमन बर हरा चारा हो सकत है तो व्यवस्था करना है। और देखा संगे संग उमन बर साफ पानी ठंडा पानी कम से कम दिन में 3 बार 4 बार पिलाना है और दिन में 2-3 बार उमल्ला नहलाना भी है कह। तो ऐसने सब के हमला देख रेख करके चलना पड़ी संगवारी हो। और देखा मशरूम उत्पादन हमार छोटे किसान मन बर आय के उत्तम स्रोत होते संगवारी हो। और मशरूम के खेती आज के समय में हमार छोटे किसान भाई बहनी मन बर आय के एक बहुत बड़े जरिया बन चुके हैं। देखा संगी हो, हमारे ये छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के मौसम है, यहाँ के जो जलवायु है आसानी ले यहाँ जो पैरा है वह आसानी ले मिल जाते कहा, तो यह मशरूम उत्पादन बर एकदम सही हवे। और मशरूम उत्पादन ले का फायदा होते संगवारी हो, तो एकल ले कम लागत में ज़्यादा मुनाफा होते। एकर बर हमला कोई बड़ा खेत या फिर महंगा खेत या फिर बड़े मशीन के जरूरत नहीं पड़े। छोटे से कोठरी या फिर छांव वाले जगह में भी एकर शुरुआत करे जा सकत है। हमन छोटे से झोपड़ी बना के भी हमन मशरूम उत्पादन कर सकत हन। और एकर ले कहो थे संगवारी हो, जोन हमार छत्तीसगढ़ में तो धान बहुत ज़्यादा पैदावार करथन कह, तो एकर से पैरा के सही उपयोग हो जाते। हमार छत्तीसगढ़ में धान के पैरा के कमी नहीं है, ऐसने में पैरा ला जलाए के बजाय ओमा मशरूम उगा के किसान मन अतिरिक्त पैसा कमा सकथन। और कम समय में फसल है तैयार हो जाते। जो मशरूम के फसल है 25 ले 30 दिन में तैयार हो जाते संगवारी हो, जेकर से किसान मन ला जल्दी पैसा मिलते। और यह पोषण से भरपूर रही थे, मशरूम में प्रोटीन और विटामिन ज़्यादा रही थे कह, जेकर से परिवार के सेहत भी बने रही थे। और एकर खेती करे के तरीका ला जानबो संगवारी हो, तो सबले पहली तो पैरा के चुनाव करना है और कर सफाई के ध्यान रखना है। सबले पहली हमला बढ़िया साफ सुथरा सूखा पैरा ला लेना है। और ये पैरा ला छोटे छोटे टुकड़ा लगभग 2 ले 3 इंच में काट लेना है। और ओला जैसे जूड़ी बनाथन वैसे जूड़ी बना लेना है। फिर 12 से 14 घंटा बर पानी में एला भिगो देना है। और पानी में कीटाणुनाशक जैसे कि बाविस्टीन है या फिर फार्मेलिन है, एला मिलाए ले बीमारी के डर कम हो जाते। यानी कि पैरा ला हमला उपचारित करना है ये जो कीटाणुनाशक बाविस्टीन और फार्मेलिन है एकर से। फिर ओला
ओकर जो नमी है ओला सुखाना है। भिगोए के बाद पैराला छान के साफ जगह में पसार देना है, यानी फैला देना है, ताकि ओकर जो ज़्यादा पानी है ओहर निकल जाए कह। फिर पैरा में सिर्फ अतका नमी होना चाहिए कि हाथ में दबा ले पानी झन टपके, ओला उतकी सुखाना है कह, कि पैरा ला हाथ में दबा ले ओकर से पानी झन निकले और बस हाथ हर भीग जाए कह। ओकर बाद संगवारी हो बेड बनाना है और उमें बीज डालना है, यानी कि प्लास्टिक के बोरी या फिर थैला में पैरा ला भरत जाना है और बीच बीच में मशरूम के बीज ला यानी स्पान ला परत दर परत डालना है। जैसे पैरा ला एक परत डालें ओकर बाद मशरूम के जो बीज है स्पान है ओला डाल देना है कह, ओकर बाद फिर एक परत पैरा ला बिछाना है ओमें फिर स्पान ला डाल देना है, ऐसे उस ओकर बाद फिर पैरा ला बिछा देना है फिर स्पान ला डाल देना है, ऐसे परत दर परत ओमें डालते रहना है 3-4 परत कह लगभग। और 1 किलो बीज ले लगभग 10-12 बैग तैयार हो जाते कह। एकर रख रखाव कैसे करना है तो बैग मनला अंधेरा और हवादार कमरा में रखना है कह, और कमरा के तापमान और नमी ला बना के रखना है। बैग में सफ़ेद फफूंद यानी कि जोन ला हमन कथन माइसेलियम पूरा फैल जाए तब प्लास्टिक ला धीरे ले काट देना चाहिए। जैसे संगवारी हो ओला प्लास्टिक ले हमन कवर करके रखे हन हमर बैग ला तो ओमें ऊपर से दिख जाते कि ओमें माइसेलियम हर सफ़ेद फफूंद हर फैल गिसे, तभी हमला प्लास्टिक ला निकाल देना है कह। ओकर बाद जैसे जैसे यार माइसेलियम हर फैलत जाते तो जोन हमर मशरूम है वह बढ़त जाते कह उगत जाते, फिर तुड़ाई और बिक्री करना है। जब मशरूम के छाता हर पूरा खुल जाते छाता जैसे हो जाते तब ओला जड़ ले घुमा के तोड़ लेना चाहिए। और हमारे जोन भी स्थानीय बाज़ार है उमन में या फिर होटल मन में जहाँ मशरूम के भारी मांग रहे थे वहाँ हमला बेच देना है ओकर बिक्री कर देना है कह। और यह हमारे छोटे किसान भाई मन पर आयस्टर मशरूम जोन ला हमन ढींगरी भी कथन या फिर पैरा मशरूम लगा के अपन घर के बाड़ी या कोठार में ही हमन महीना में कम से कम 5-10 हज़ार रुपये तक आसानी ले कमा सकत हन। अगर किसान भाई मन एकर ड्रायर मशीन रख लीं तो मशरूम ला सूखा के ओकर पाउडर बना के और ज़्यादा कीमत में ओला बेच सकत हैं और अपन के आमदनी ला बढ़ा सकत हैं कह। और हमर छत्तीसगढ़ सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र मन के कोती ले एकर भी ट्रेनिंग दिए जाते जेकर फायदा छोटे किसान मन ला जरूर उठाना चाहिए कह। तो ये तो ही संगवारी हो मशरूम उत्पादन छोटे किसानों की आय का उत्तम स्रोत, यह रही समर आज के बाद के विषय। तो संगवारी हो मशरूम उत्पादन बहुत ही अच्छा व्यवसाय हवे कह, एला आप मन अपना करके आपन के आमदनी ला बढ़ा सकत ह और ए में कन्हों बड़े जमीन या फिर बड़े मशीन के जरूरत नहीं रहे। यह छोटे किसान मन पर अच्छा हवे संगवारी हो, यह उमन के आय के उत्तम स्रोत हवे, तो आप मन जरूर मशरूम उत्पादन करो आपन के आमदनी ला बढ़ावा। और संगवारी हो बेरा हो गिसना कृषक प्रश्न मंच के कोती जाए के, तो आज के प्रश्न ला लिख लेवा। आज के प्रश्न हवे लेजर तकनीक हर भुइयां के का काम करथे, तो संगवारी हो एकर उत्तर आप मल्ला हमन आगे गोठियाबो आगे चर्चा करबो तो ओमें जरूर मिल जाही। तो आप मन हमार कार्यक्रम ला सुनत रिहा हमार कार्यक्रम में अंत तक बने रिहा तो एकर उत्तर आप मल्ला जरूर मिल जाही। और एकर उत्तर आप मन ईमेल के माध्यम से या फिर चिट्ठी के माध्यम से लिख के भेज सकत हवा कह। और संगवारी हो आवा एक ठन सुग्घर अकन के लोकगीत ला सुन लेबो ओकर बाद फिर चर्चा ला आगू बढ़ाबो।

हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहें सुख घर अकन के लोकगीत ला, जला गा रहीन है माधव कुशवाहा। और देखा संगवारी हो, आज के मौसम के क्रम कोती जाबो तो अधिकतम तापमान रही से आज 37 अंश सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 अंश सेंटीग्रेड और आर्द्रता बिहनिया 7 बजे रही से 81%। यह दोपहर में घट के 2 बजे होगी से 48%। और हवा के गति 2.7 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलत हवे कहा। और हवा के दिशा के बात करबो तो यह उत्तर ले पूरब कोती बहावत हवे। और संगवारी हो, ये जानकारी हर हमला मिलते कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र बोईरदादर रायगढ़ के मौसम वैशाला के जोन यंत्र है उमन के हिसाब ले कहा। और संगवारी हो, हमार आज के नसीहत के विषय हवे लेजर तकनीक द्वारा भूमि का समतलीकरण। देखा संगवारी हो, खेती किसानी में पानी के सही उपयोग और बढ़िया फसल बर लेजर लैंड लेवलर तकनीक हर आज के समय में बहुत काम के है। एला छत्तीसगढ़ी में हमन लेजर मशीन ले खेत के समतलीकरण भी कह सकत हन या एला कथन कह। और लेजर तकनीक ले खेत समतलीकरण का होते एला जानबो तो एहर एक ऐसन आधुनिक तकनीक है जेमा लेजर किरण के मदद ले खेत ला एकदम बराबर समतल करे जाते। और साधारण तरीका ले खेत ला समतल करे मा ऊंच नीच रही जाते, फिर लेजर मशीन ले खेत हर 1 इंच घलो ऊपर नीचे नहीं रहे। जैसे संगवारी हमन साधारण तरीका ले खेत ला समतल करथन तो का होते कुछ उबड़ खाबड़ हो जाते, लेकिन हमन ये जो लेजर तकनीक है एकल ले हमन खेत ला समतल करथन तो 1 इंच भी एमें ऊपर नीचे नहीं रहे, एकदम बराबर समतल हो जाते हमार खेत हर। और ये जो लेजर तकनीक है यार कैसे काम करते तो इमें लेजर ट्रांसमीटर लगे रहे थे कहा। खेत के एक कोना में एक स्टैंड ऊपर लेजर मशीन ला लगाए जाते, यार चारों मुड़ा लेजर किरण छोड़ते कहा। जो खेत के एक कोना है उमें एक स्टैंड में एक और ऊपर में लेजर मशीन ला लगा सकथन कहा। और इमें लेजर रिसीवर भी रहते, ट्रैक्टर के पीछे लगे जो बकेट है जो लहमन खुरपी या करहा में एक रिसीवर लगे रहते जे हर ट्रांसमीटर के किरण ला पकड़ते। और इमें कंट्रोल बॉक्स भी रहते, ट्रैक्टर चलाए वाला करा एक मशीन रहते जे हर अपने आप बकेट ला ऊपर नीचे करते, जहां माटी ज़्यादा है ओला वहाँ ले आन के नीचे जगह में भर देते कहा। और लेजर तकनीक के फायदा के बात करबो तो पानी के बचत होते थे, जब खेत बराबर रही थे तब पानी सबों कोती एक बराबर पहुँचते, एकल ले 20 से 30% पानी के बचत होते। और इमा कम मेहनत तो कम समय भी लागते कहा। ट्रैक्टर ला बार बार घुमाए के जरूरत नहीं पड़े, काम जल्दी हो जाते। देखा संगवारी हो, हमार खेत हर लेजर तकनीक ले हमन समतलीकरण करबो तो ओमें जब हमन पानी पलबो तो ओमें का होते सब पानी हर खेत हर समतल रही तो एकदम बराबर फैल जाही ना, तो एकर से का होते पानी के बचत होते और सबों कोती पानी हर बराबर पहुँच जाते। तो इमें कम मेहनत और कम समय भी लागते, ट्रैक्टर ला बार बार घुमाए के जरूरत नहीं पड़े, काम जल्दी हो जाते। और ट्रैक्टर जैसे ज़्यादा नहीं चलही या फिर बार बार नहीं घूमी तो इमें हमार लागत भी कम लागी, पैसा के बचत भी हो ही कहा और फसल के बढ़िया बढ़वार भी होते। और खेत जैसे समतल रही तो उमें खाद और दवाई घलो सबों पौधा ला बराबर मिली कहा। हमार खेत में
ये जो राखण खातू दवाई है ये सब हर खेत समतल भी तो बराबर मात्रा में पहुँच जाए जेकर ले जोन हमार पैदावार है ओकर बढ़ोतरी होते और एम 10-15% तक पैदावार हर बढ़ जाते और एकर से निंदाई कोड़ाई में आसानी भी होते कह खेत समतल होए ले खरपतवार कम उगते और निंदाई करे में सुविधा होते कह और जैसे अभी बताएं कि निंदाई कोड़ाई में आसानी होते और निंदाई कोड़ाई जैसे बहुत ज़्यादा हम खेत है समतल नहीं रही तो बहुत ज़्यादा बंद कचरा हो जाए तो एकर निंदाई कोड़ाई में जो मजदूर के खर्चा है वो हर भी बाँचते कह और खेत के रकबा हर बढ़ जाते मेड़ और नाली मन के सही व्यवस्था हो ले खेत पर ज़्यादा जगह मिलते कह और देखा संगवारी हो खेत ला समतल कराए के पहली एक बार हमला गहरा जोताई जो गहराई ले जोताई कर लेना चाहिए। ये काम ला गर्मी के दिन में करना है जब हमार खेत हर खाली रहते तब हमला ये जो गहराई जोताई है एला कर लेना चाहिए सबले बढ़िया होते ए समय और हमार सरकार कोती ले भी ऐसा आधुनिक यंत्र मन बर सब्सिडी छूट घलो मिला थे कह जेकर जानकारी आप मन अपन जिला के कृषि विभाग ले सकत हवा और देखा संगवारी हो ये तो हो इस लेजर तकनीक द्वारा भूमि के हमन समतलीकरण कैसे करथन तो एकर से संबंधित हमन आप मन ला कृषक प्रश्न मंच में प्रश्न भी पूछे हवन कह तो आप मन सुने हवा तो एकर उत्तर जरूर लिख के भेजिए और आज हवे दिन सोमवार संगवारी हो और आज हमार विशेष क्रम रहते चिट्ठी मिलिस के क्रम तो आज के चिट्ठी मिलिस के क्रम ला लेके आए हवा मैं आप मन के संगवारी सुमित्रा पटेल तो आप सबो जन के ये क्रम में बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है। तो ये चिट्ठी मिलिस क्रम में पहला ईमेल भेजैया हमार संगवारी हवें चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू रविंद्र और रौनक सेन एमल लिखत हैं संगवारी हो हमार छत्तीसगढ़ के खुशबू पूरा दुनिया में बगरे हवे हमार छत्तीसगढ़ के माटी के सौंधी सौंधी खुशबू के आनंद ला मनखे अपन अंतस में समा के बसा के राखे हवे एकरे सेती हमार छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते। बिल्कुल सही बात कहे हवा संगवारी हो हमार छत्तीसगढ़ के माटी के जो सौंधी सौंधी खुशबू है वह बहुत ही बढ़िया लागते जेखर कोरा में हम सब खेले कूदे हवन छोटे ले बड़े बाढ़े हवन और यही छत्तीसगढ़ के सुघर कोरा में बसे हवे आकाशवाणी रायगढ़ जेखर माध्यम ले हम श्रोता संगवारी मल्ला आनी बानी के गोड बात संग सुंदर सुंदर गीत संगीत सुने के सौभाग्य प्राप्त होवत रहते जेन ला हमार बीच मा बटोर के लानत रहते आकाशवाणी रायगढ़ के जम्मो मयारू संगी संगवारी मन जेकर मन के मीठ मीठ बोली के रस के रसपान करत रहथन। तो संगवारी हो हमू मन भी आप मन के मीठ मीठ जो ईमेल है ओकर भी हमन लिखे रहता ओकर भी रस के पान करत रहथन कह और यही क्रम में सोमवार 4 तारीख के आकाशवाणी रायगढ़ के जाने मानी हस्ती हमार भाई जेखर माया के जुबान में कलिंदर के मीठ रस बोहात है वो हरे दिलीप चौधरी के सुंदर अंदाज मनमोहक आवाज में चिट्ठी मिलिस कार्यक्रम ला हमार बीच में परोसिस ईमान से कार्यक्रम ला सुन के हम सोच में पड़ गेन का लिखन हमार बुद्धि फेल हो गे ऐसन सुघर प्रस्तुति चोला हरियागे और इही क्रम में अपन माया भरे गुरतुर बोली संग लोकरंजनी कार्यक्रम और लीजिए फिर सुनिए कार्यक्रम में अपन आनंदमय प्रस्तुति ले संवारी श्रद्धा वर्मा बहनी
संगमा हेलो संगी कार्यक्रम में विशेष रूप ला अपन अंदाज ले संवारिस भाई मुकेश चतुर्वेदी जी। और यहाँ गर्मी के मौसम में शीतलता प्रदान करत आइस हमर मायारू छोटे बहनी सुमित्रा पटेल, जेकर मुखार विंद ले हेलो संगवारी कार्यक्रम ला सुनेन हृदय में समा गे। और माटी के गीत कार्यक्रम में गोमती साव के मैना कस मीठ बोली हमर अंग अंग में समा गे। ताहले हमर लोकगीत कार्यक्रम में आकाशवाणी रायगढ़ के सुप्रसिद्ध मशहूर सुमधुर आवाज के जादूगर हमर मायारू संगवारी सुशील प्रधान जब ये कार्यक्रम ला प्रस्तुत करिस, दाई के हमर दही के लस्सी के स्वाद सीठा लागे लगिस। का सुंदर बेहतरीन प्रस्तुति रे भैया, तन मन झूम गे।

आप मन के मनमोहक अंदाज में लिखे ईमेल ले सबो प्रस्तुतकर्ता हमार संगी भैया बहनी मन में मतलब उमन के मन में खुशी होत हो ही उमन खुशी में गदगद होत हो ही आप मन के बधाई कार्यक्रम के माध्यम ले एहर पहुँचा थे। तो आप मन ला इतकी अच्छा ईमेल लिखे बर इतकी ध्यान से हमार कार्यक्रम ला सुने बर और ध्यान से सुनता आपन के विचार और सुझाव ला लिखता एकर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है। और संगवारी हो अगला ईमेल आए हवे नानघाट कातल बोर्ड ले भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर ऋतु राजपूत एम लिखत हैं दिन सोमवार के चौपाल में बड़ सुघर सुघर जानकारी ला बटोर लाए रहिस जेमा हम अन हमन सुनेन उत्तम स्वास्थ्य के बारे में जानकारी और योग ले फायदा टमाटर के नर्सरी के जानकारी और खेती बारी में जानकारी जिमी कांदा अदरक हल्दी के खेती के बारे में सुघर जानकारी क्रम चिट्ठी मिलिस के सुघर और अनोखी प्रस्तुति पर स्वप्निल दीदीला बधाई 28 अप्रैल के हेलो संगी के झमाझम प्रस्तुति पर दिलीप भैयाला बधाई और 29 अप्रैल के लोक रंजनी पर डिडनेश्वरी दीदीला बधाई देते हैं और 30 अप्रैल हेलो संगवारी पर रामविलास ला बधाई देते हैं और 1 मई हमर लोकगीत पर रामविलास ला बधाई और लीजिए फिर सुनिए बर दीपक नेगी जी ला बधाई देते हैं। तो संगवारी हो आप मन हमर सबो कार्यक्रम ला ध्यान से सुना था और लगन से सुना था और क्रम से लिखे हवा तो एकर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है और आप मन के जोन बधाई है ओहर हमर संगी संगवारी भैया दीदी बहनी तक कार्यक्रम के माध्यम से जरूर पहुँचत हो ही संगवारी हो ओ मन भी आप मन के ईमेल ला सुन के गदगद होत हो ही तो इतकी अच्छा ईमेल लिखे बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हो अगला ईमेल आए हवे देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्विनी वर्मा गणेश राम मिस्त्री कुमारी हाव्या रजक कुमारी टानिया रजक एमन लिखत हैं आकाशवाणी रायगढ़ के सबो कार्यक्रम हर हमन ला बहुत अच्छा लागथे जम्मो कार्यक्रम ला हमन ध्यान लगा के सुनथन बढ़िया प्रस्तुति बर आकाशवाणी रायगढ़ ला कोरी कोरी बधाई। तो संगवारी हो आप मन लिखे हव कि आप मन सबो कार्यक्रम ला बहुत ही ध्यान लगा के सुनथा और सबो कार्यक्रम हा बहुत ही बढ़िया लागथे तो इतकी अच्छा से आप मन ध्यान से लगा के सुनथा संगवारी हो एकर बर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है और आकाशवाणी रायगढ़ कोटी ले आपो मन ला भी बहुत बहुत बधाई है। और संगवारी हो अगला ईमेल आए हवे ग्राम पीपल लोड सरगांव मुंगेली ले दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति और शिवांश वर्मा एमन लिखत हैं दिनांक 7 तारीख के बिहनिया फोन इन कार्यक्रम हेलो संगवारी जिला प्रस्तुत करिस कोली कस बोली मायारू दीदी सुमित्रा पटेल जी है जी संगवारी मन के गोड बात सुने बर मिलिस और उमन के पसंद के लोकगीत भी सुने बर मिलिस तो ये लोकगीत मला सुन के मन हर झूम गे और साथ ही लोक रंजनी प्रस्तुति दिन श्रद्धा दीदी और हमार लोकगीत प्रस्तुत करीन है भैया सुशील प्रधान जी और मासिक कार्यक्रम माटी के गीत ला प्रस्तुत करे रहीन है गोमती दीदी तो एमन सबो ला बधाई दे थे। तो संगवारी हो आपो मल्ला भी हमर आकाशवाणी रायगढ़ परिवार कोती ले बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मन सबो कार्यक्रम ला बहुत ही अच्छा से सुना था वा और तारीख हिसाब से लिख के भी भेजा था वा एकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हो अगला ईमेल आए हवे

माँ महामाया चौक मेघापारा चिलफिले, रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल, टेकलाल पटेल, मनोज साहू, छोटकू साहू और मोहर पटेल। एमल लिखत हैं, दिनांक 7 मई 2026, दिन गुरुवार के कार्यक्रम हेलो संगवारी के सुंदर संचालन पर हमार दीदी श्रीमती सुमित्रा पटेल ला हृदय ले गाढ़ा गाढ़ा बधाई। तो संगवारी हो, आपो मन ला भी हृदय ले बहुत बहुत बधाई कि आप मन हमार संगवारी ला हमार कार्यक्रम हेलो संगवारी ला सुने हवा और यार आप मन ला अच्छा लगी सेकर बार बहुत बहुत धन्यवाद। और यही दिन कार्यक्रम माटी के गीत मा सुंदर संचालन बर दीदी गोमती साव जिला घलो झौहा झौहा बधाई दे थे मन। तो आप मन के जोन बधाई है संगवारी हो, एहर हमार कार्यक्रम के माध्यम ले हमार गोमती साव दीदी जी तक पहुँचे थे, ओ मन भी सुन के गदगद होत हो ही कहा। और ये कार्यक्रम ला सुने हवा एक बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देत हो। और संगवारी हो, 8 मई 2026 दिन शुक्रवार के कार्यक्रम हमार लोकगीत लेके आ रही भैया श्री सुशील प्रधान ला ईमेल शामिल करे बर आकाशवाणी रायगढ़ के सबो परिवार ला हृदय ले धन्यवाद कोटि कोटि बधाई देत हैं। तो आपो मल्ला भी संगवारी हो आकाशवाणी रायगढ़ के परिवार कोती ले बहुत बहुत धन्यवाद है और बधाई है कि आप मन हमारे सबो कार्यक्रम ला अच्छा से सुना थवा और आपन के विचार और सुझाव लिख के भेजा थवा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हमला आप मन के जोन ईमेल है विचार है सुझाव है एला पढ़ के अच्छा लगते और हमन आगे प्रयास करथन कि आप मन बर और अच्छा से कार्यक्रम प्रस्तुत करन बहुत ही सुंदर तरीका ले। और संगवारी हो, अगला ईमेल आए हवे गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार ले जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलाऊ दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी। एमन लिखत हैं, सब प्रेम साहेब बंदगी जी। तो आपो मल्ला साहेब बंदगी जी। एमन लिखत हैं, 9 मई 2026 के बनीता विहार लेकर आ रही हैं प्रियंका दीदी जी है। महिला और बालिका में होने वाला शोषण से बचाव के बारे में जानकारी बताइन और पक्षी के बारे में जबरदस्त भेंटवार्ता भी सुनाइन और करम आपके पत्र आपके गीत में हमला बहुत ही पसंद आईस। एमन जो क्रम होते हमार आपके पत्र आपके फरमाइश एमला बहुत ही अच्छा लागिस कहत हैं। तो संगवारी हो, आप मन ऐसने ही हमार कार्यक्रम मल्ला अच्छा से लगन से सुनत रह आप मन के ईमेल पढ़ के हमू मल्ला भी अच्छा लागते कहा। तो इतकी अच्छा ईमेल लिखे बर आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हो, अगला ईमेल आए हवे मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू योगेश साहू राहुल साहू। एमन लिखत हैं, सादर नमस्कार। तो आपो मल्ला भी नमस्कार संगवारी हो, आकाशवाणी रायगढ़ के डहाल ले प्रसारित कार्यक्रम में हमन लोकरंजनी हमर लोकगीत माटी के स्वर चिट्ठी मिलीस कार्यक्रम हमला बहुत ज़्यादा पसंद आते एकले हमर भरपूर मनोरंजन भी होते ही और एकर से हमला सीख और प्रेरणा भी मिलते और फिलहाल सफल प्रस्तुति पर आकाशवाणी परिवार ला हार्दिक बधाई देते हैं। तो संगवारी हो, आपो मल्ला भी हमार आकाशवाणी परिवार को तिले हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन हमार सबो कार्यक्रम ला लगन से ध्यान से सुना।

लिखत हवा और तारीख हिसाब से बढ़िया से जमा के लिखत हवा, तो एला पढ़ के हमला भी हमार दीदी भैया मल्ला प्रस्तुतकर्ता मल्ला भी बहुत ही अच्छा लागते। तो ऐसने ही ईमेल लिखत रिहा संगवारी हो, ईमेल लिखे बर आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। और संगवारी हो अगला ईमेल आए हवे देवरी भाटा पराले मुकेश कुमार रजक, युवान रजक, हाबिया रजक, तन्नू रजक, तानिया रजक और नित्या रजक। एमन लिखत हैं 4 मई के प्रसारित चिट्ठी मिलिस ला ले के आए रहीन है दिलीप चौधरी जी, जोन में श्रोता मन के भेजे गए समीक्षा पत्र ला शामिल करीन और 6 मई के प्रसारित लोक रंजनी ले के आ रहीन है श्रद्धा वर्मा, जोन मन श्रोता मन के भेजे गए फरमाइशी पोस्ट कार्ड और ईमेल पत्र ला शामिल करीन और ओमन के गीत भी सुने बर मिलिस। और आगे लिखत हैं 7 मई के प्रसारित हेलो संगवारी ले के आ रहीन है सुमित्रा पटेल जी, जोन में श्रोता मन से सुंदर बातचीत और उमन के गांव शहर के बारे में जाने बर मिलिस और उमन के पसंद के गीत भी सुने बर मिलिस और सबो सुंदर प्रस्तुति बर सबो उद्घोषक के साथ आकाशवाणी रायगढ़ ला बधाई देते। तो संगवारी हो आपो मन ला भी हमर कोती ले बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मन हमर सबो कार्यक्रम ला सुनथव और ये जो फोन इन कार्यक्रम होते यहर आप मतलब बहुत ही अच्छा लगते काबर कि में श्रोता मन के सुंदर बातचीत और मन के गांव शहर के बारे में जाने व मिलते कहा और उनके पसंद के गीत भी सुने व मिलते, तो ये कार्यक्रम सब बोला बढ़िया लगते संगवारी हो। और इतकी अच्छा ईमेल लिखे है एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसने ही संगवारी हो ईमेल लिखत रही आप मन के ईमेल लिखे ले हमार उत्साह वर्धन बढ़ते, हमन उत्साहित होतन और कार्यक्रम ला अच्छा से अच्छा प्रस्तुत करे के हमन प्रयास करथन कहा। और संगवारी हो अगला ईमेल आए हवे बनियापरा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य ले हवे रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा चुटकी, शरद कुमार डोडवानी, उनके पूरा माखीजा कुटुम्ब परिवार एमन कहते हैं सहृदय आभार जी। तो आपो मल्ला आभार जी। और कहते हैं कि वंदे मातरम जी, तो वंदे मातरम जी। प्रिय प्रसारक प्रसारिका दोस्त जी मल्ला एमन वंदे मातरम कहते हैं, तो आपो मल्ला भी वंदे मातरम हमर कोती ले। आप मन के प्रसारण ला हमर पूरा कुटुम्ब सुनते और प्रसारण हर पसंद आइस जी कहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप मन हमर कार्यक्रम ला पूरा कुटुम्ब परिवार सुन के मतलब मिल के सुनता हो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। एमन आगे लिखते हैं कि दिनांक 4 मई 2026 सोमवार के प्रोग्राम ला पेश करीन लहरिया बोली के बोलैया प्रिय भाई श्रीमान दिलीप चौधरी जी मन दिन आप मन बढ़िया प्रस्तुति देवा जी कहते हैं। तो आप मन के जो संदेश है संगवारी यहर हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचा थे कहा। और आगे लिखत हैं दिनांक 6 मई 2026 बुधवार सुबह 8:30 बजे क्रम लोक रंजनी ला पेश करीन प्रिय बहन श्रद्धा वर्मा जी मन गीत मन सुमधुर लागिस कहते हैं। तो अच्छा बात है संगवारी हो कि आप मन सबो कार्यक्रम ला डेट बाई लिखे हवा बहुत ही ध्यान से सुना था। और आगे लिखीन है 7 मई 2026 गुरुवार के क्रम माटी के गीत ला पेश करीन प्रिय बहन गोमती साव जी और दिनांक 8 मई 2026 शुक्रवार के हमार लोकगीत ला सुनाइन प्रिय भाई श्रीमान सुशील प्रधान जी मन। और ये सबो कार्यक्रम पत्र के ईमेल मा तैयार
करे गे रहिस हे कहत हे। सब्बो एपिसोड ला हमन सुने हवन, अब्बड़ आनंद आइस जी कहत हे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आप मन सब्बो एपिसोड ला सुनत हवा। और आगे लिखत हैं प्रसारण सहयोगी एनर्जी मैन श्रीमान प्रिय भाई हरफन मौला राम विलास पटेल साहेब जी मन, और प्रस्तुतकर्ता प्रिय भाई श्रीमान रवि आनंद जी, बधाइयाँ स धन्यवाद कहते हैं। एमन एमल्ला धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। तो संगवारी हो, आप मन के बधाई और धन्यवाद हमार कार्यक्रम के माध्यम से हमार प्रस्तुतकर्ता और प्रसारण सहयोगी मन तक जरूर पहुँचा थे कहा। और आगे लिखा थे दिनांक 9 मई 2026 शनिवार के प्रोग्राम ला पेश करीन प्रिय बहन अनुसुईया जी मन, ये दिन आप मन कद्दू वर्गीय फसल मा कीट नियंत्रण, दूध ला खराब होए ले बचाए बर गृह वाटिका खेती पर और भगवानन गांव के श्री हेमलाल जिले गोड बात करीन हमार बहन अनुसुईया जी कहते हैं। एमन के जो भेंटवार्ता जो फसल रही से विषय रही से कद्दू वर्गीय फसल में कीट नियंत्रण एला एमन सुनिन तो एमन ला अच्छा लगिस कहते हैं। तो संगवारी हो, आप मन हमार सब्बो कार्यक्रम ला ध्यान से लगन से सुना था और समय निकाल के आप मन इतकी अच्छा ईमेल लिखा था और दिनांक बाय दिनांक डेट बाय डेट लिखा था और कौन कार्यक्रम ला कौन प्रस्तुत करीन एला भी बढ़िया से सुन के लिखा था। एकर बार आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे ही हमार कार्यक्रम ला सुनत रहा और ईमेल ला लिखत रहा संगवारी हो। और देखा हमन आप मन के ईमेल ला पढ़ के हमला अच्छा लागते और हमार जोन भी प्रस्तुत करैया हमार संगी संगवारी हैं ओमन ला भी अच्छा लागत है कि ओमन के नाम भी आई से कके। तो ऐसने ही संगवारी हो ईमेल लिखत रहा। और देखा ये जो चिट्ठी मिलिस के क्रम है ये हर यही सिरावत है कहा। तो चिट्ठी मिलिस के क्रम ले मोला देव विदा, राम राम जय जोहार। और संगवारी हो आवा एक ठन सुन लेबो सुग्घर अकन के लोकगीतला, फिर हमन चर्चा में आगू बढ़बो।

0: हाँ तो संगवारी हो, अभी हमन सुनत रहन सुग्घर अकन के लोकगीत लगा जला गार हिन है साध राम मरावी अमन के साथी मन। और संगवारी हो, बेरा हो गिस ना आज के भेंटवार्ता के कोती जाए के, तो मैं गे रहे ग्राम परधिया पाली विकास खान बरम किला के कृषक हमें उत्तम कुमार पटेल एमल्ले व्यवसायिक स्तर पर बकरी पालन एकर से लाभ ये विषय में हो रही से मोर बातचीत, तो आवा एला सुन ले वो।
1: संगवारी हो, बकरी ला गरीब के गाय कहा जाते हैं, काबर की बकरी ले हमार जो गरीब किसान रहते हैं ओमला सतत आमदनी मिलते, ओकरे खातिर बकरी हर गरीब मन के गाय होते, जब भी पालन करते हैं ओमला लाभ ही लाभ मिलते है ना। तो ऐसने ही हमन एक युवा बकरी पालक किसान संगवारी ले भेंट करवो, तो सबले पहली आप मल्ला मोर को तिले राम राम जय जोहार।
2: राम राम जय जोहार।
1: तो आप मन के परिचय बताहा।
2: मैं उत्तम पटेल परधिया पाली से, मरमकिला विकास खंड से।
1: अच्छा अच्छा, तो उत्तम पटेल जी ये बताया कि आप मन बकरी पालन कब ले करा था?
2: बकरी पालन हम लोग बहुत पहले से करा था, कम से कम 20 साल हो गए ना।
1: अच्छा 20 साल हो गए ना।
2: हाँ
1: हाँ, तो बकरी पालन करे ले आप मन ला लाभ मिला थे?
2: हाँ बहुत लाभ है।
1: अच्छा, तो थोड़कुन एकर लाभ के बारे में बताया।
2: बकरी पालन खेती किसानी के साथ ही हो जाते
1: हाँ।
2: साथ में खेती किसानी हो जाते, साथ में बकरी पालन हो जाते।
1: अच्छा,
2: तो दोनों ले हर साइड में आमदनी खेती से भी आ जाते बकरी से भी आ जाते।
1: अच्छा अच्छा, मतलब दोनों काम एक साथ हो जाते।
2: काम एक साथ हो जाते
1: हाँ। जैसे बकरी के खाद होते है ना, तो लाभ मन खेती किसानी में उपयोग करता।
2: हाँ खेती किसानी में उपयोग करता।
1: अच्छा, तो एकल ले आप मन के फसल ला लाभ मिला थे?
2: हाँ बहुत लाभ मिलते, इसमें उर्वरक खाद जून में बकरी के खातु ला देता हूँ बहुत कम लगते।
1: अच्छा।
2: जून में बकरी के खाद नहीं दिया जाए, दो या तीन बार देना पड़ते यूरिया डीएपी। अब बकरी खाद दे रहे थी मैं, एक बार ही दे देवे डीएपी और एक बार यूरिया तो धान हो जाते।
1: अच्छा, इसकी मतलब हर फायदा मंद है कहा।
2: हाँ।
1: तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप मन बकरी पालन करे है, तो एकर काम मतलब एकर खाद के खेती किसानी में भी उपयोग हो जाते और संगे संग एकर ले आमदनी भी हो जाते है ना।
2: हाँ।
1: तो ये जो बकरी पाले है तो यह का मतलब नस्ल के?
2: हमारे बकरी मन देसी लमकानी दोनों है।
1: अच्छा,
2: देसी भी है लमकानी भी है। जो देसी बकरी से ज्यादा फायदा होता है, देसी बकरी साल में दो या तीन बार बच्चा देते और लमकानी बकरी है साल में एक बार बच्चा देते।
1: अच्छा अच्छा, मतलब हर अच्छा है, मतलब देसी नस्ल के हर अच्छा है का।
2: हाँ देसी न लमकानी हर भी ठीक है।
1: हाँ अच्छा, यह एक बार बच्चा देते है ना।
2: हाँ,
1: तो एकर से कम मतलब मुनाफा मिलते।
2: हाँ
1: हाँ,
2: देसी बकरी में का है दो बार तीन बार बच्चा दी तो दो भी दी तो चार बच्चा हुई तो मुनाफा ज्यादा हो जाते।
1: अच्छा, तो ये जो बकरी मन बच्चा देते है ना, तो कतका दिन में मन मतलब देते?
2: एक बकरी हर 6 से 7 महीना में एक बार बच्चा दे देते।
1: 6 से 7 महीना।
2: हाँ, अगर वह ठीक रही तो।
1: अच्छा, तो एमन जैसे रोग बीमारी हो जाते हैं तो कैसे करता?
2: रोग बीमारी हो जाए वही अपन आसपास के पशु डॉक्टर से चिकित्सालय से इलाज करवाथन।
1: अच्छा अच्छा,
2: या फिर खुद भी इलाज करथन।
1: तो आप मन कैसे जानते कि जो बकरी है मन मतलब रोग बीमारी होगी से ग्रसित होगी से?
2: काय बकरी की बीमारी पहचानना एकदम आसान है।
1: अच्छा,
2: सबले ज्यादा बकरी मला सर्दी हो ही या फिर पेचिस होते।
1: अच्छा, सर्दी या पेचिस होते।
2: हाँ, और ऊपर से हुई तो मतंगी होते, तो उमन पर सरकारी टीका ला टाइम के टाइम लगवाना पड़ते।
1: अच्छा, तो कतका दिन में टीका लगते?
2: अब साल में 3 बार लगी टीका।
1: साल में 3 बार लगवाना ज पड़ते।
2: हाँ, एक ठो पीपीआर के लगते जो पोंकई बीमारी कहते टीकर।
1: हाँ हाँ,
2: और एक ठो मतंगी पर लगते। और एक ठो खाली चमड़ी वाला माने की किरमी पर लगते।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, मतलब आप मन जो टीका है ला अच्छा से नियमित रूप से लगवा था। हाँ, है ना।
2: नियमित रूप से टीका लगाए लेका ये बीमारी हर बहुत कम आते।
1: अच्छा, ये तो मतलब बहुत बढ़िया बात है कि आप मन नियमित रूप से लगा था, तो आप मन के बकरी मन कम बीमार पड़ा थे, है ना।
2: हाँ।
1: फिर आप मन ये जो बकरी मन के खाना पीना है, मतलब खान पान के क्या व्यवस्था है?
2: बकरी मन के उसे खान पान के तो ज्यादा ध्यान नहीं देन, सुबह चराए बर बाहर खेत तरफ ले थन।
1: हाँ,
2: वही 12 बजे घर वापस आई तो उमला जून भी घर में रही पानी वानी नमक उमक देख के अच्छा से पिला थन, दो तीन घंटा आराम करते हैं, फिर 2-3 बजे ढिलथन, 5-6 बजे फिर घर वापस लानथन, फिर वैसे खाना पीना मेंटेनेंस ध्यान रखते, नमक वमक दे के पानी अच्छा से देना है।
1: मतलब चराए के बाद पानी में नमक डाल के वाला पिलाना है।
2: हाँ, नमक डाल के पिलाए ले का अच्छा से पाचन होते तो बढ़िया से सब चीज हर मेंटेनेंस रहते।
1: अच्छा, नमक पाचन के काम करते का।
2: हाँ।
1: हाँ, तो मन के शरीर है स्वस्थ रहते,
2: स्वस्थ रहते।
1: जैसे बकरी है कतका दिन में मतलब बड़े हो जाते, एला कतका दिन में बेचे के लाग हो जाते है ना?
2: हाँ, बकरी हर का ये अलग अलग स्टेप में, जो बकरा रहते ना तो बकरा रखे ले वहर 9 से 10 महीना में वही 4-5 हजार के बन जाते, ऊपर से वाला अच्छा मांस उत्पादन करे बर खस्सी कर थन तो खस्सी करे ले हर साल भर 1.5-2 साल रखना पड़ते।
1: अच्छा।
2: तो हर अच्छा से इनकम मिलते, एक ठी बकरा बकरा के 15-20 हजार मिल जाते।
1: अच्छा, और जो बकरा के?
2: हाँ, जो बकरी बच्चा रहते ती मन के 5-6 महीना में वही 4-5 हजार तक के बन जाते।
1: अच्छा, 4-5 हजार?
2: हाँ, 4-5 हजार तक बन जाते।
1: तो ये बकरी के मतलब मांस कम रहते ओकरे खातिर मूल्य जो दाम है कम हो जाते?
2: हाँ, बकरी के मांस खातिर मूल्य कम हो जाते, और बकरा मन के का खसी करिया तो किलो हिसाब भी बिकते।
1: अच्छा,
2: बाहरी जब कुचिया आते हैं लेवाल आते हैं तो मन किलो हिसाब लेना ज्यादा पसंद करते हैं। 400 रुपए किलो में ना उम लगाटा रहे ना हम लगाटा रहे।
1: अच्छा अच्छा, तो जैसे एक ठो बकरी के जो मांस बेचता है ना तो ये मतलब सबो बेचा जाते?
2: हाँ।
1: तो आप मन वर्तमान में मतलब औसतन कतका ठी रात था?
2: हमारे अभी वर्तमान में 65-70 ठी बकरी है।
1: अच्छा।
2: बच्चा और मियारी सब मिला करके,
1: सब मिला के। हाँ। बकरा बकरी सब,
2: बकरा बकरी मिला करके 65-70 ठो है।
1: अच्छा। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप मन इतकी सारा रखे है, एकर पालन करत है ना, और बढ़िया से आमदनी कमात है। तो आखिर में हमार जो औ श्रोता संगवारी है, किसान संगवारी है, बकरी पालक संगवारी है, उमन ला आप मन का कहना चाहता है, आप मन के विचार बताहा?
2: मैं जितना भी श्रोता गण है वो कहना चाहता कि खेती के साथ में बकरी पालन गाय पालन ऐसे कुछ क्या करना चाहिए जिससे घर में आय हर बने रहे।
1: हाँ, ये तो बहुत सही बात कहा था कि मतलब एक तरफ के आय जब कम हो जाए तो दूसर लोहा कभर हो जाए, है ना?
2: हाँ,
1: हाँ। तो संगवारी इतकी अच्छा जानकारी देवा एक बार आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार।
2: राम राम, जय जोहार।

0: है तो टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हाँ तो संगवारी, अभी हमन सुने संदेश कहा और देखा, हमारे आज के टिप के विषय हवे दुधारू पशुओं को लू के प्रकोप से बचाएं। तो बिल्कुल सही बात है संगवारी हो, दुधारू पशु मल्ला लू के प्रकोप ले बचाना है। यदि हमारे दुधारू पशु मल्ला लू लग जाते तो मन के जो दूध के उत्पादन के क्षमता है वह बहुत ही कम हो जाते, मन सुस्त हो जाते और नाना प्रकार के बीमारी होने लगते। तो उमन के हमला देख रेख करना है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक श्री अन्न। तो संगवारी हो, श्री अन्न हमार अच्छा होते, जो मिलेट फसल है वह अच्छा होवे, एकर हमार हमला सेवन करना चाहिए। जैसे कोदो है, कुटकी है, रागी है, ये सब हमार स्वास्थ्य पर अच्छा होते, तो आप मन एकर सेवन जरूर करो। और संगवारी हो, और भी चर्चा के विषय हवे शिक्षाविद और विचार जय कृष्णमूर्ति जयंती। एमन के जो जय कृष्णमूर्ति है उमन के आज जयंती हवे, और स्वतंत्रता सेनानी आसफ अली और साहित्यकार सादत हसन मंटो एमन के भी जयंती हवे। तो संगवारी हो, मोर जाय के बेला होते तो मोला देवा विदा। आप सबो संगी संगवारी मल्ला, राम राम, जय जोहार।

चौपाल कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। आइए अब सुने गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

0: गैर फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आबिदा की आवाज में ये गीत।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: इसके साथ ही गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: आकाशवाणी @90।
1: नमस्कार साथियों, मैं इश्क कुमारी यादव, सरपंच ग्राम चीहा बागबारा। आज अत्यंत विहर्षक का विषय है कि देश की प्रतिष्ठा

0: शीत प्रसारण सेवा आकाशवाणी अपनी गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण कर रही है। आकाशवाणी ने दर्शकों से गांव गांव तक सूचना, शिक्षा, लोक संस्कृति और जन जागरण का संदेश पहुंचाकर समाज को दिशा देने का महत्वपूर्ण सेवा आकाशवाणी अपनी गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण कर रही है। आकाशवाणी ने दर्शकों से गांव गांव तक सूचना, शिक्षा, लोक संस्कृति और जन जागरण का संदेश पहुंचाकर समाज को दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम जन के हित में प्रसारित कार्यक्रमों ने ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में विशेष भूमिका निभाई है। आकाशवाणी केवल समाचारों का माध्यम नहीं बल्कि जन विश्वास और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आकाशवाणी परिवार एवं समस्त श्रोताओं को 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि आकाशवाणी निरंतर समाज हित और राष्ट्र निर्माण की दिशा में नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे। जय हिंद।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: संदेश के पहले आपने सुना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म आखिर क्यों का ये गीत। गीतकार थे इंदीवर और संगीत राजेश रोशन का था। इन्हीं का लिखा और संगीतबद्ध किया गीत एक बार फिर से आइए सुने। फिल्म है कामचोर, आवाजें हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 8:45 होने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें

0: लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुने, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: For the season of खरीफ 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत

0: जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
1: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
2: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
2: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
3: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ

0: 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: धड़कन प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तुम्हारी कसम फिल्म से। इसे गाया है मुकेश और आशा भोसले ने। संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने। रचनाकार आनंद बख्शी।

द ग्रेट गैम्बलर। लीजिए अब इस फिल्म में सुनिए अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार को। संगीत तैयार किया है आर डी बर्मन ने, बोल आनंद बख्शी के।

0: शायद तू ए, क्या कह रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

लीजिए सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म गुलाम में। गीतकार समीर, संगीतकार जतिन ललित।

देश परदेश। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, संगीत राजेश रोशन का, बोल अमित खन्ना के।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए सुनिए खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम त्रिशूल।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी
0: रखता है।

0: और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश किशोर कुमार की आवाज में महान फिल्म से। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।
1: छाया गीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार।

0: सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कॉम्पिटिशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया काई स्वप्ने विकाई चीत, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद देलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद देलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्धसत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्धसत्य काफी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानें।
1: तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्धसत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया। इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा मैंने, कहा ये क्या रोल है? बोले छोटा है, अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

0: सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए, हाथ पे जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा? चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए, इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर।

0: लिखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं। लेकिन आपके एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिक्कू पई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांता बाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं। लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दूरवांची जुड़ी ये एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
1: अरे ये क्या हो गया ये साले, उन बदमाशों को यही एक दुकान मिले लूटने के लिए।
2: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
1: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
2: अच्छा अच्छा,
1: आ गया हसमुख, आ गया हसमुख। ए हसमुख हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वहां का रहा दोस्त, घबराना नहीं।
3: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
1: पागल हो गया।
3: अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
1: कैसे?
3: मैंने है ना 2 दिन पहले दुकान बेच दिया था।
1: क्या?
3: हाँ।
1: किसको?
3: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था, उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
1: कॉन्ग्रेचुलेशन। ए आंडो पांडो।
2: यस सर।
1: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
4: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्या मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
1: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
5: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें,

0: गोली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है।
1: आगे

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविध संगीत। आइए पहले सुने आरती मुखर्जी के स्वर में गुलजार की ये रचना।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

विविध संगीत में आइए अब सुनें आमिर मीनाई की गजल जगजीत सिंह के स्वर में।

0: पे
1: तो एक शेर पे मुकर्रर की आवाज आई तो वो शेर दोबारा पढ़ दिया गया। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने फिर दोबारा शेर पढ़ा। उसके बाद फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाले ने तीसरी दफा फिर पढ़ा। लेकिन फिर मुकर्रर की आवाज आई तो गाने वाला बोलता है कि साहब मुझे अगला शेर भी पढ़ने दीजिए अभी। तो ऑडियंस में से आवाज आती है कि जब तक आप इसको सुर में नहीं पढ़ेंगे हम मुकर्रर ही बोलते रहेंगे।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। आइए अब सुने अहमद और मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये गजल। शायर हैं हसरत जयपुरी।
1: यूं ही तुम

इसके साथ ही विविध संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध।

अनुरोध कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और आप सभी का कार्यक्रम अनुरोध में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के कार्यक्रम के लिए पहला गीत हमने लिया है आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म एक फूल दो माली से। गीतकार हैं प्रेम धवन और संगीत रवि का है। इस गीत के लिए हमें खत लिखा है इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा, लाल टंकी चौक रायगढ़ से चेतन दास, शीतल दास, सुशीला साहित्या, मनोज मुकेश और अंकित साहित्या, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। तो आइए सुने आप सभी की फरमाइश पर फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप

0: ओपेरोस सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्री झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण वाधवानी, श्रीमती विमला वाधवानी, मास्टर हर्ष खुशी और शुभम वाधवानी, यहीं से हैं कन्हैया लाल तीर्थानी। गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, ईशु और अंशु गुप्ता। धमनी किरवई से समीलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर। आइए सुने आप सभी की फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दिल एक मंदिर का गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का है।

अगला गीत है फिल्म सिलसिला से, आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत शिवहरि का है। इस गीत के लिए पत्र लिखा है हमें छत्तीसगढ़ बेमेतरा से श्रीमती पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भाव्या सारथी और श्रीमती सुषमा सारथी। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। धरसीवा से छेदुलाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना अरुणा यादव, अरुणाधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। लक्षणपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

0: अनुरोध कार्यक्रम में आईएफ ने इंदिवर का लिखा गीत कल्याण जी आनंद जी की बनाई धुन पर फिल्म सच्चा झूठा के लिए आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। पसंद है आप सभी की दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु और लक्ष्मीना यदु। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर वीरक, जयतेग वीरक और मीका वीरक। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी गणेश मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे और नारायण भाऊ खर्चे।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और कर्मणा वर्मा, जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हैं हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर फिल्म भीगी पलकें का गीत, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम अनुरोध अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने

हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल की सभा में सुबह 5:53 पर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।